सेवा प्रवान करने आओ। अंत दे विच अज बच्ची किरणजीत कौर दा बर्थडे है, उस उन्हां दे जन्मदिन खुशी विच उस बच्चे नूं आओ सारी संगत ने मिल के धन गुरु अर्जन साहिब पास इस पावन शब्द द्वारा आशीर्वाद देनी है। पूता माता की आरती आओ सारे रखो, कोई रिश्ता ना करने जाए, देव बच्ची नूं आशीर्वाद, उस तो परम समाप्ति।

इतनी सेवा प्रवान करें धनता देव जो सदगुरु सभी हजर में बैठ के आप जी हरी जस द्वारा हरि कीर्तन द्वारा बरसाए जा रहे हैं। हरि नाम रूप मोती चुपके मनुख जीवन सफला बना रहे। सदगुरु महाराज बख्श कर सारा की हाजरी अपने दाते लाओ सारा के सिर के उत्ते बख्शिश बराहत रखन अंग संसाई मोर देश परदेश रखा कर आओ जितनी संगत बैठी है गुरु पास चरना कमला चित जोड़ो छोलिया गई अरदास बेनती करो सतगुरु जी हो कृपा करके अपने पवित्र नाम की खैर साड़ी छोलिया पाओ आओ सारे जपो कोई सना कर ना जाए।

धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी परम पवित्र बाणी का सत्कार करते हैं। आप जी संता वजो बेअंत माया जो विजय दाता जो सर्व तो दरगुरों को सिखी दाता शुभ मत पक्ष चढ़ जा कला देश प्रदेश उठा चल अमृत विजय दान।

खैर खैर रह जाएगी। दर्शन की अजराय उदास रोता है, मेरे धन को नाच डालता है, एक मेरी दर्शन तरुणी दे सारे रहने वाले बड़े हैरान। राय बदार होती हो हर मेरे गुरु नानक की गुरु नानक कूदता फिरता है, राय बदार चला हो गए राय बदार होती हो हर मेरे गुरु नानक की गुरु नानक कूदता फिरता है, राय बदार चला हो गए राय बदार छोड़ता है। प्यारे हो गुरु नानक का प्यार जो मैंने मिलिया हो नहीं, यह तो अंत का प्यार है, अदम का प्यार है, पता नहीं कि जन्मों का प्यार है। तो राय बदार रो के उन्होंने कह देता है कि अदम

आवाज पकड़ रही थोड़ी आवाज जब कभी सारे सारे सर तुम्हारी भाई सब तुम्हारी रात है मेरा वाली रात है और मेरी सास प्यार ना करता है।

कर रहे हैं। पेड़ों में काली दिया राय बुलाए में बड़े सत्कार आ कालू सुना कोई मेरे धन गुरु नानक दिखो कल आवेगा मेरा माही एडे वे छोड़े देंगे कालू तू अरदास कर मेरी अरदास नहीं सुनता मेरा माही क्योंकि मैं पापी किसी सुनी नहीं पुकार किसी गुरमुख नहीं अरदास कालू मेरा जलवा फिर मेरा जीवन सब कालू दुनिया की तोहफा कराए जी ये ठीक है मैं अरदास कर नानक आवेगा नहीं जी मैं अरदास की थी तो आवा नानक भी वापस चला जाएगा आपको श्री वाले क्योंकि मैं वो माया का कीड़ा जिसने 20 रुपया बदले गुरु नानक के थोड़े मुकड़े में चंदेड़ा पाया 12 साल के भी छोड़े थे एक लौते पुत्र में भी छोड़े थे आज मैं फिर कालू में भी निर्भर कर पश्चाताप कर जाओ हर जिना मैं लाल के सोने मुखड़े में चपेरा पड़े अज्ञान कर एक दिन कह दिता ना जी पिता जी रेगड़े रह के कम नहीं चलेगा कोई काम करो जो आगे लै 20 रुपये लै जा कोई सौदा कर कोई बिजनेस कर मैं तेरे नाम का भाई बाले को तोड़े बाले नाम कभी अनजान है तू ख्याल रख अब तभी आने की पैसे लिया भी तो बच्ची तो रुक होनी चाहिए चले गए जंगली टके सरुआ का झुंड देखा अरे कह लगे बाले जी महाराज आप महापुरुष के दर्शन करेंगे रब के प्यारे रब के प्यारे के दर्शन कितिया रब चेते आ आवे सारे चित तेरे भगत मन की कटिए मैल साध करेंगे बाले ने क्या मारा आप जेड़े काम आए हो करिए सानू की लौड़े क्योंकि बाले को पता भी अभी सारा रबों का प्यार करना कितने समाधि लगा के बैठा अरे कह लगे पहले महापुरुष के दर्शन पाना हज चंगा महाराज आए इन्होंने जरा मन सी बड़ी वधेरी उम्र का चिंता अजुत वर्गा था एडा वा लिटा का उसे जुड़ा किया होया साहबा ने आके आदेश दिता इन्हें पर खुद सत्कार मार दिखाया दुनिया को दाता देने वाला दुनिया का राजक मेरा धन गुरु नानक अब उन्हें प्यार ना रुकिया मारा ही सुनाओ को जब छके अब कुछ इस तरह मां प्यार जाके पुत्र को कह दिए क्यों पुत्र प्रशादा छक लिया ये तो छक लिया तो मां पहले रख जा ये नहीं छके तो सच्चा पिता आज कुछ नहीं मंत्र ने किया महाराज कितने दिनों का पूछ ले हो एक दिन का दो दिन का तीन दिन का इन्हें क्या 5 दिन हो गए हम प्रशाद जी ने सब का प्याला पी के बैठे हर कहे बाले जी महाराज पिताजी ने की किया सी पिता ने किया कि खड़ा सौदा करेगा सच्चा सौदा करेगा नाम है हजूर कह लगे बालिया इस तू वा सच्चा सौदा हो कोई ना माना कोई सौदा नहीं की करिए 20 रुपया का सीधा लिया के भुखे साधुआ भोजन बालिया महापुरुष में मुंह जिस वेले अन जाएगा रब खुश हो जाएगा गुरु नानक आके सुन भाई बाला ए सौदा है लाभवंत
अब करिए सब का तेरी नौकरी। भाई बाजे ने बड़ा समझाया महाराज, पिता के गुस्से को जान दे हो के नहीं बाजे पिता ने ही किया खरा सौदा गांव वाला ये सब तुम्हारे चूर काने जाके सीधा के अंदर प्रसाद तैयार किया महापुरुषा ने छकाया कभी तेरे सारे ने छकिया प्रसाद सुखे में रोटी मिल जाए शांति आए सभी प्रसन्न है। तो जरा महापुरुषा का मन सी और अंदर ध्यान होके कटिया तो जो मना उमरा छोटी जाए है तो कम बड़ा वाला चीज है कि प्यार ला किसी को प्रसाद का शिकार ना अपने पता नहीं ये कौन है जिसने महापुरुष ने उसने अंतर ध्यान होके देखा हैरान हो गई ये तो आप प्रतीत हो गए आप अकाल पुरुष है निर्गुण को सगुण रूप धारते इसे सानू दर्शन देने वास्ते आया है उठिया रह नहीं सकिया मेरे धर्म मार्ग में गए ने लंबी जमा तेरे ने किया गुरु जी ये की सकल निकाल दिया बाल का और मथे पर डिग रहे हो मंत्र के अंत ही जेरा तुम्हें निकाल दिया बाल का हिस्सा है ये सारे तू वा सारे तू आई फिर बढ़िया।

सारे महापुरुषों ने साधा ने धन गुरु नानक अगे नमस्कार की सारे ने कहा धन गुरु नानक उठे साधवान पछाद छका के हजूर वापस मुड़े तलवंडी के नेड़े आए कह लगे बाले बाले आती तो इतने बवाने तू घर चला जा। बाले ने किया बड़ा समझाया कि नहीं समझे गलती कर बैठे हैं ना हूं इतने रुक के बहना चाहते साधु बच्चे बाला अपने घर आ गए कानू उड़ीकता पिया नानक सच्चा सौदा करने वास्ते गया होया आया नहीं किसी ने क्यों नहीं था जी भाई बाला आ गया। अच्छा फिर नानक क्यों नहीं आया मैं क्या कालू भाई बाले ने घर चला बाले है जी बैठा है नानक किथे भाई बाला बोले मैं तेरे फिर पूछे नहीं बोले तीजी वेरी औली जी किया उथे वणा दिया चंगिया में लुक के बैठा क्यों क्यों लुकिया है बनाए दसो भी रुपये थानू दिते सन कितने क बना के आए भी ने तीह के पच्ची बाले ने किया मैं ताजी रुपये की बना के लियाने सानू तो मूड़ी गुल हो गई है आखो श्री बने और किस तरह सारी विद्या कर कालू के अंदर गुस्से की ज्वाला बढ़ तेरा लाल हो गया किथे है नानक आज मैं नानक नु जीवदा नहीं छ मेरा घर उजाड़ जा रहे है नेता कालू क्रोध पिंडा देना माता त्रिता नु पता लग जाए आज बड़ा गुस्सा आया हो रहा है पता नहीं मेरे लाल लाल की करे बुलाया नहीं नानकी जी अम्मी जा तू जाके पिता को समझा दे कोई भी 20 रुपये ही है बेबे 100 रुपये मां ने सोचा नौजवान धी घरों पर भेज दिता है पिछे नौकर को भेज दिता नहीं रह सकी मां आप भी मगर मगर तुर कालू कौन चुके अगे हजूर समाधि लगा के बैठे कर पता नहीं कहे प्रोग्राम पे सोचते जगत जनते ठंड पाने वास्ते पता नहीं दादा कहे विचार जाते पैसे कालू ने हजूर की मां पकड़ के खड़ा कर लिया गुस्से लाल अखा करके गया कितने हर मेरे वीर भी कल सुनने दुनिया का दाता हजूर ने एक मेरी अखा खोल के पिता वाल तकिया फिर नजर दिए करते गुस्सा चंडाल ने इस चंडाल गुस्से ने की किया तेरी सास संगत मैं ते कालू का खब्बा हथ फेरा ते मेरे धन गुरु नानक की सच्ची सच्ची गल दे उत्ते चपेट बैठी सोहना मुखड़ा गुलाब वाला मुखड़ा इतना सोहना मुखड़ा चपेट बजी गुलाब दिया पंखड़िया कुमलान लगे नीर पै गए देते पहुंच गई देवे ने सोचा चंगे मौके से पहुंच गई आज मेरे पिताजी ने वीर वास्ते कुछ नहीं किया पर जो तेरे अगे होके तकिया की तकिया नरंकारी वीर ने सोने मुखड़े से नीर पै उपा मार के रो कह लगी पिताजी मेरे वीर नु नाम है रति वीर नु नाम है बेबे की कहती है नानक की।

मां भी आवाज सुनी, माता पिता ने नेत्र खोले, गीत किया, जिस पुत्र ने छोड़े इतने सुन हो सावता नहीं आया पर धी आ गई है आप जी। मां जी ने दिलुगड़िया पा पा के अपना प्यार उड़े, माता पिता ने किया नानकी कोई आप मेरे नानक भी सो। मां जी मैं राती सुनने आवा, माता पिता ने किया नानकी दे गया छोड़ा, एक साल नहीं दो साल नहीं बारह साल पूछो सारे पिछले जिस लाइफ को एक पुत्र हो गए फिर बारह साल पिछले आ गए उस मां के पिछले। नानकी पूर्णमासी आई उड़ीक की थी नहीं आया नानक, फिर अपने अपनी सूत्र कट के कपड़ा बनाया कटिया ओला चोला बनाया, मां भी सूत्र सी आएगा मेरा लाल मैं उसे गल च पावगी मेरी अखा छक चोला तैयार होया चोला पाने वाला नहीं एक चोला नहीं बारह चोले तैयार हो। नानकी फिर कर करता मां भी प्यार देखे बेबे दिया भी धुप्पा निकल बेबे भी रो अरदास करती बेबे नानकी वीर जी आओ दर्शन बेबे भी रो अरदास करती बेबे नानकी वीर जी आओ दर्शन। तो बेबे किस तरह अरदास करती है इसे महापुरुष ने लिखा है।

ए तन होती खाक में माड़ी गोर करे, ए तन होती खाक निमाणी गौर करे। अजमला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, अजमला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, मनो मचंदड़िया, जे जाना मर जाइए कुम न आइए, झूठी दुनिया लग

चल ले चल हार बिचारा ले मनो चले चलनहार विचार ले मनो गंडेंदिया छे मार तोड़ेंदिया सिखनो जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गहे

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सूझे कह कबीर सुमरे प्राणी कह कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो।

हरजसरी मन गाय ले हरजस रे मन गाय ले जो संगी है तेरो असर बिचो जात है।

जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे ईरानिया हर तुम मत अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाह, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला हर कृपा कर।

गुरु साजी निवाजी साध सिंह जीओ राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न दी सेवा कर रहे हैं। श्री राग दा जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असीं ऋषभ कहने आ, सा तों बाद दूसरा स्वर रे है, उसनों ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनों पा कहने आ, सारे गामा पा, पंचमा सुर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन्हां दोनों सुरां दे सुमेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ है, जिस तरह

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। यह ग्रंथ जो है सर्वलोक प्रकाश की बाणी है। धागड़ी धर्म दृढ़ तांग दागड़ी दिम दिरना, पागड़ी ब्रिकते बांग तागड़ी तोम तोम तोम दिरना, दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। इस साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। यह अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगम लगा और ताना लगा कुम किरना नाल दे दे ताल दागड़ी दे दे ताल के तुसी ताना लगाते हो ताल का ना ख्याल भुल जाए। ताना भी लगाओ और ताल के अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना, बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना, इस नू कीर्तन कहेंगे। जे राग ते ताल कट दियो बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ दी दे दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। तो उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

श्रवण करो भाई बलबीर सिंह जी दे रागी जते पासों शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।

एक ताल दो ताल हुण तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हुण तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब मेरा वरे आ राम जोग

एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौश, चंद्र कौश, सूर्य कौश, जोग कौश, चार ही पंक्तियां, बिसर गई सब तात्पराई, जब ते सत्संग में पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो कब कीनो सो भल मान्यो, इस मत साधु ते पाई, सब मेरा रहा प्रभ एक है, देख देख नानक बिकसाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने, ये तराना जेड़ा है ये अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा चुका के रख देने वाली बात है। मैं इतने बहुत वड़े वड़े गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहन लगे जी सिखा तो राग गाना ही नहीं आता, ऐसा सारे सामने ना क्या कहते, असर ही वार तो ला लेंगे पर राग गाना नहीं आता। मैं कह जी राग साढ़े सतगुरां ने गाया, कहते गाए तो तुम सुनाओ, ये तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहते जी ये सानू लिखा दियो तराना, असी तो इस तरह की बंदिश कभी सुनी नहीं। मैं कह जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही सरवण करो, उन्होंने को ही दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नमस्कार की, इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मान तो तराना सरवण करना, साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ अंदर विद्यमान ने, कभी आप दर्शन करना तो

0: पंचम और ऋषभ का मेल देखना
1: पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा

0: अमृतसर सतगुर सत भगती जित नाते कौआ हंस होवे
1: सतगुर
0: अमृतसर की अमृत गुर अमृतसर न बढ़ाया सब लाथे गिल वेख पंग
1: सतगुर

राम रे राम राम रे के जी सब में राम रे राम बस गई सब रात बराई जब ते साल संग तो माई ना को मेरी नहीं बिगाना सगल संग हम गा बड़े आई जो प्रभु की नो जो वरमान हो मस मस साधु दे भाई सब में राम रे राम राम रे राम राम रे राम हाँ प्रभु एक है सब में राम रे राम

जनमति अनेक अनेकायु सत्यम लोड़वंद पुरुष दाता जो दानी पुरुष होंगे उन्होंने पास जाते हैं दानी पुरुष उन्होंने उसी उस तरह की माया दिता है जिस तरह का वो चलता है। तो इसी तरह भाई साहब दसते हैं कैसे गुरसिख आवत है अनेक कैसे गुरसर गुरु शरण के अनेक आते हैं कोई कितों चल के आता है कोई कितों चल के आता है जो जो जिस तरह की भावना लेके गुरु महाराज की चरण शरण आता है उसे उस तरह की कामना लेके सतगुरु को जाता है। आओ कोई सुना साधना जाए।

राग गौड़ी दक्षिणी विच ऋषभ धैवत कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच गंधार धैवत सुर वर्जित हैं। इस दी जाति औडव संपूर्ण वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा सवेर दा पहला पैर है। इस राग विच नाम मिले चले मैं नाल शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह करीर।

प्राचीन अते प्रसिद्ध राग गुजरी भगती भाव दे गायन लई विशेष अनुकूल मन्या जांदा है। इस राग दी संपूर्ण रचना करुणा रस नाल ओत पोत होने कारण संगीतकार ने इस दी प्रकृति करुण मन्नी है। हर श्रद्धा हर प्यास इस दा तरला है। शौ नूं पौणा ही जीवन दा मकसद है, यही दर्शाया है गुजरी जात गवार जा सौ पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना। सौ पौण लई तन मन अर्पो पूज चढ़ावो, सब कुछ ही अर्पणा पैंदा है। इस राग विच ऋषभ गंधार अते धैवत कोमल लगदे हन, मध्यम तीबर है और पंचम वर्जत है, निषाद शुद्ध लगदा है। इस दा बादी सुर धैवत अते संवादी रे है। गायन समा दिन दा दूजा पहर। निर्धारित राग गुजरी विच पहला शब्द श्रवण करो। गा रहे हैं भाई तेजपाल सिंह जी, भाई सुरिंद्रपाल सिंह जी, सिंह बंधु। शब्द दे बोल हैं ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो। दूजा शब्द भाई निरंजन सिंह जी की आवाज विच श्रवण करो। शब्द है गुजरी जात गवार जा सौ पाए अपना। पहला शब्द ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो।

आन रूती आन बोइए फल न फूले ताए। रे मन वत्र बीजन नाओ बोए खेती लाए मनुआ भलो समो सुआओ। खोए खेड़ा भरम मन का सदगुर सरणी पाए। करम

भाव भगत परवान है होम जग ते पुरब कमाई करके नीच सदावना ता प्रभु अंदर लेके पाई।

अच्छी कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी। वो कवि भी सी, 52 कविया विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए। कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो।

साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी।

सदैया बिंद के सदैया ताहे हीज के बडाया अमंदर सदीव नंग पाए ही फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण ज्ञान के बहीन छिन के